0: Ica Radio.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
1: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Lyca Radio Network. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410 दैट्स 0208574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Lyca Radio.

0: ये है
1: लाइका रेडियो
2: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज ओएसिस ओशंस एलीट फैशंस एंड स्पोर्ट्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू सो व्हाई वेट बी पार्ट ऑफ दुबई'स ग्रोथ स्टोरी कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंदन ऑफिस टुडे ऑन 02039635757 to arrange your meeting.
3: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
4: I left behind everything I knew.
3: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
4: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
3: The cycle of love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Budget tight, पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए. कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
9: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
1: Four beers, please, garçon!
0: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Fishbitnaga with The Reload every weekday afternoon at

0: है लाइका रेडियो।
1: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com।
2: Lyka Radio, easing you through the night with London's biggest

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वडियाई।

अनाहत जुग जुग एक ओवेस आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एक आवार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के

0: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in store on 215 The Broadway, Southall.
1: And gold is currently trading at £105.11 per gram.
0: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Gold outperforming all other investment options. So invest in gold with Gold Bank London. 215 The Broadway, Southall, or buy from us online at gold-bank.co.uk.
1: All right, well, that's the end of hour one. In the next hour, we've got Guest the Celeb coming up, so make sure you tune in for that because that's going to be fantastic. But you have to translate the English titles to the original Hindi and guess who the actor is. All right, well, leaving you with a lovely track from the film, but Bachnaya has seen until we reach the news and on the other side.
0: This is Anuj Radia. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Da New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Da New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: हमारी रक्षक है वो.
4: Balaji Telefilms presents The One, Force of the Forest.
5: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सब का मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
4: Mystery, fantasy, action. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas Friday 25th September. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
6: What food में dinner plans? थोड़ा classy, थोड़ा desi.
7: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
6: From crispy starters, but चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
7: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
8: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफेज कैटरर्स फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410 दैट्स 8574 8410
8: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
10: London, are you ready? As Surinderella is coming to you for autumn 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting desi twist. Catch it at the Theatre Royal Stratford East 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed desi panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Laika Radio.
11: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
12: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
11: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
13: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
14: द पीपल ऑफ ब्रिटेन लव देयर स्पिन बाइक्स दे बॉट लोड्स ऑफ देम अनदर थिंग दे लव इज मूविंग देयर क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस टू अ बार्कलेकार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड बिकॉज़ दे कुड पे नो इंटरेस्ट फॉर अप टू 36 मंथ्स नो वंडर इट्स रियली टेकिंग ऑफ A balance transfer fee of 3.15% applies, subject to financial status. T's and C's and exclusions apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 24.9% APR representative variable and 24.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
15: Anuj Radia on Leica Radio.

0: जिंदगी वहां सेट करो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज ओएसिस ओशंस एलीट्स फैशंस एंड स्पोर्ट्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू सो व्हाई वेट बी पार्ट ऑफ दुबईज ग्रोथ स्टोरी कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंडन ऑफिस टुडे ऑन 0203 963 5757 टू अरेंज योर meeting.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: अल नूर पुराना बाइतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
2: ब्रंच एंड बीट्स विद अनुज राडिया

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
2: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Ending track of the week.

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: Lovely stuff there from Junaid Gandhi and Shahid Malia from Manmarzia. Right around the corner, this week's trending track of the week is playing next, and the full clues for Three Course Meal.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Honey, I was in the pet aisle, and you'll never guess what.
3: What is that?
2: A gerbil. They were on sale.
3: Why would we want that?
2: They were doing 3 for 2.
4: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses, and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
1: Niraj on the Sunday Showdown. Proudly sponsored by tickets2india.co.uk. For the best rates, book online or call 020-8518-9100. Bringing India closer.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: You know how fans shout at football matches?
8: Oh, wake up!
7: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
9: हमारी रक्षा है वो
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सब का मतलब क्या है कौन कर रहा है ये
10: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
12: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ डैनी प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन
13: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
14: Dubai is the place.
13: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
15: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
16: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क
17: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
18: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
17: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
19: Not only is Aldi's Almat Bio Washing Powder approved by Good Housekeeping for 2 years running, it's also just £3.89. That's less than half the price compared to Ariel Washing Powder from Tesco at £10. So go on, give Aldi a spin. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Trending track of the week